0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्कॉटलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
2: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी। तुन्ना ज्वेलर्स, 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।
1: ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬਤਾ ਦੋ,
2: ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
0: ਸਟਾਰਿੰਗ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ।
3: सोना चाहिदा,
4: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
5: लो जी तुहाडी नजर है भोला।
3: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
6: भोले ने कसूते फसाते।
3: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: लो जी तुहाडी नजर है पोला।
2: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
3: पोले ने कसूते फसाते।
2: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2।
4: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनु भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू की हो यहाँ इनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
1: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़िया।
0: अज सिमी पेंजी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही मैनू सच्चे कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क रूपी गिल अते हिम्मत संधु पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
0: चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जा वीजे लई मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल के होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाड़ी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
2: देखो सच बता दो।
3: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
1: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
4: जवाब हमेशा चढ़ती कला

हां जी, हुण मैं शो दे इस हिस्से दे विच तुहानू एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी दा नाम है वक्फा। अज बड़ी देर बाद इस शहर दा चक्कर लगा सी। देर, बहुत देर, घट्टो घट दो अरसे। 20 साल बहुत लम्मा समा होंदा है। बड़ियां यादां जुड़ियां ने इस शहर नाल। कदे इह शहर मेरा अपना हुंदा सी, मेरी वाकफी सी सड़कां नाल, गलियां नाल, बाजारां नाल ते लोकां नाल एक सांझ सी। भावें मैं उन्हां नूं जानदी नहीं सी, पर फिर भी वह मैनू मेरे अपने लगते सन। पर कुछ लोगों नाल ते मेरा मोह वखरा ही सी। मैडम जी, तुहाडी वारी आ गई। अचानक एक आवाज कन्नी पई ते मेरियां यादां दी लड़ी टुट गई। सामने दफ्तर दा कलर्क खड़ा सी। इस शहर दे एक सरकारी दफ्तर विच मैं किसे काम आई सी। असल विच अपने बेटे दियां कुछ डिटेल्स चेंज करवाउणियां सन। उसी यूनिवर्सिटी वालियां ने डॉक्यूमेंट मंगे सन। खैर, मैं अपना पर्स चुकिया, ऐनकां ठीक कीतियां ते कलर्क दे नाल तुर पई। किन्ना पुराना दफ्तर सी। देश किन्नी तरक्की कर गया, पर सरकारी दफ्तर अज भी उसे तरह ही हन। सब माहौल उसे तरह। कमरियां विच सीखां वालियां बारियां, ओहो जई टेबल ते कुर्सियां ते अलमारियां विच फाइलां। टेबल ते पई चाह वाली गलासी। पर जिस कमरे विच कलर्क मैनू लेके गया, उसका हुलिया कुछ वखरा सी। एक बार ते मैं थोड़ा जा हैरान हुई, पर फिर सोच आई, क्योंकि ये वड्डे साहिब दा कमरा है ते शायद वो थोड़े शौकीन भी लगते ने, इसे लई ये कमरा कुछ वखरा है। लगता साहिब बाथरूम गए ने, तुसी बैठो, वो हुणे आउंदे होणगे। कलर्क ये कह के चलिया गया ते मैं कुर्सी ते बैठ के इधर उधर वेखण लगी। हर एक कंध ते एक एक पेंटिंग टंगी हुई सी। बड़िया खूबसूरत पेंटिंग सन। एक पासे वड्डा सारा वेस रख्या होया सी ते विच बड़े ही खूबसूरत फुल। एक पासे लकड़ दी शेल्फ वाली अलमारी जिस विच कई किताबां पईयां होईयां सन ते दूजे पासे एक होर अलमारी जिस विच काफी सारिया अचीवमेंट्स ते अवार्ड पए हुए सन। मेरे घर भी विच भी एक एहो जिही अलमारी है जिस विच मेरे पति दे फौज दे विच, क्योंकि मेरे पति एक फौज च वड्डे अफसर हन, उन्हां दियां अचीवमेंट्स ते अवार्ड ते मैडल टंगे हुए ने। मेरियां अचीवमेंट्स, मेरिया अचीवमेंट से शायद किधरे गुम हो गई ने, जां फिर उन्हां दियां अचीवमेंट से सामने फिक्कियां पै गई ने। मेरे घर विच भी फोटोआं लगियां ने, मेरे पति दे अवार्ड लैण दियां फोटोआं, कदे राष्ट्रपति कोले, कदे प्रधानमंत्री कोलों। मेरे घर विच पेंटिंग्स नहीं हन। शायद पेंटिंग दे वजूद नालों राष्ट्रपति जां प्रधानमंत्री कोलों अवार्ड लैण दी फोटो दा वजूद ज़्यादा है। ते मैं एक

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: कि तुसी जानदे हो कि बच्चे दा लगभग 90% दिमाग उनां दे 5 साल दे होण तो पहला ही विकसित हो जांदा है। मुफ्त किंडर 3-4 साल दे बच्चियां नूं प्राइमरी स्कूल शुरू करन तो पहला 2 साल लई गुणवत्ता वाली सिख्या प्रदान करता है अते परिवारां लई पैसियां दी बचत करता है। किंडर विच बच्चे खेड राही सिखदे हन, जिस नाल ओ महत्वपूर्ण समाजिक, भावात्मक अते बौद्धिक हुनर विकसित करदे हन अते नवे दोस्त भी बनाउंदे हन। वधेरे जानकारी लई vic.gov.au/kinder ते जाओ।
2: की होया, इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है?
3: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम अज भी नहीं बनया।
2: अज सिमी भैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
4: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नु छू जान वाली अते रूह नु हिला देन वाली फिल्म है चढ़दी कला।
5: देखो सच बता दो।
6: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
4: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नु तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
7: जवाब हमेशा शक्ति कला।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोड़ी नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
3: क्या आप जानते हैं कि बच्चों की उम्र 5 साल की होने से पहले उनका दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है? निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
4: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पहन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
4: अच्छा, असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानो भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
1: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है। थैंक यू ए दे बारे दसन लई।
5: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल
0: 4654924
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।

राग खिरवानी में गजल कंपोज हुई है और आप मेहरबान हौसला अफजा दोस्तों की वजह है, भाइयों की कि काफी मशहूर हुई है, पॉपुलर हुई है। ये अहमद फराज की गजल है। शोला था जल बुझा, हवाएं मुझे

0: इतनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
1: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: आज सिमी पेंजी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au।

0: नजर है ओला।
1: ओए पुली ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधु फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए 2 होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 04332802552 ते 04332802552।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: कबूल है तेरा हर दुख सुख, मैनू कबूल है तेरा हसना रोना, ते मैनू कबूल है तेरा हर वो लफज जो बिना कहे बुलां तो बयान होंदे तेरी अख चो। साड़ी जिंदगी अज उस मोड़ ते है जिथे तू मैनू छड़ना नहीं ते मैं तेनू छड़ नहीं सकता, इसे करके तां कहा मैनू लगता प्यार मेरा जाऊगा।
1: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असीं बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या अज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: जाते 04332802852 ते। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानो उड़ीक रहे हैं। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
1: Tension, निरी tension.
2: की होया?
1: अथे immigration दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं.
2: काका जी, tension छड़ो, phone चको, call करो. VY Immigration नू, जित्थे immigration expert हरपाल सिंह बाजवा, employer sponsor, partner या parents, या visa, skilled migration, student visa, MRT या RRT, appeals ते skills assessments दे माहिर बैठे ने. हुणे ही appointment ली call करो, 0410-503-503.
1: या 90-77-93-33.
2: या email info@vyimmigration.com.in.
1: याद रखो 9077-9733
2: VY Immigration and Education Consultant
1: हर कदम तुहाडे नाल
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
3: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922 बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
4: यार उना दा डेंडीनॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
3: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डेंडीनॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही परोसा ते 30 साल तो वद वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नी
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
3: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस ले कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

रंग रंगीली दुनिया दा है चार दिना दा मेला, सोने मुख तो ला उदासी भुल के जगत चमेला। ओए चिंता चिखा समान दोस्तों, रोग ना डाडा लाइए, जल्ली रब तो डर के रहिए, आओ नचिए गाइए।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
2: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410 500
0: या 90 77 97 33
1: या

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सेंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखी है लेख होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिया समुंद सा सुल्तान गिरया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न

ना पाए जाए। ए अंत न जाने को बहुता कही बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे बेकार, केते लैलै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने

नानक पातशाही पातशाह अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल लै जाए, अमूल पाए अमूला समाए, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल प्रमाण, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान, अमूलो अमूल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाय, आखे वेद पाठ पुराण, आखे पढ़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईसर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार मुन जन सेव, केते आखे आखन पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे ता आख न सके के ई के, जे वड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगान, ता लिखिए सिर गवारा गवार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे, केते राग प्री स्यो कहियन, केते गावन हारे, गावे तुनु पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति स्थिति संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न ईश्वर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावे रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे, सही तुनु गावे जो तुत पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया, जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाह सहा पत साहेब, नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करो बबूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया पंडारन, कट कट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साद, संजोग वंजोग दोय कार चलावे, लेखे आवे पाग, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीवान, जिव तिस पावे

आसन लोए लोए पंडार, जोग चुपाया सोए कावार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सते की साची कार, आदेश तसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी पौ लख होए, लख होए लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए, एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया, चढ़िया होए अकीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा आई रीस, नानक नदरी पाईए, कूड़ी कूड़ै ठीस, आखन जोर चुपै नहीं जोर, जोर न मंग दे न जोर, जोर न जीवन मर न जोर, जोर न राज माल मनसोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापे जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का खो करम, केते पवन पानी बैसंतर, केते कान महेश, केते ब्रह्मे कार्त कड़िया, रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी, केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव, केते नानक अंतनांत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद बनोद कोट आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै कारत कड़ी है बहुत अनूप, काकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै कड़ी है सुरां सिदां की

रूप न कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिन कै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोए, करे आनंद सच्चा मन सोए, सचखंड वसे नंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्रन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तंग तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है

नंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुक्त प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदा एकाम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां बरनाडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाय न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश।

अशोक वर्ण है सर्वा अवर्ण के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख दुदामे गनी मुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अक्षज है छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चातरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमामल तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमीक उमा है करीमल कुमाल है के जुर जुमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंबर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म में आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तन स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

0: नहात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास नवरिय पूजो सदा हमारे पच्छा सिरिया तुझो करियो रच्छा राख।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो रावते पुपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे त्योहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार त्योहार है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

तहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन।

0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: जुग जुग अटल दीन दुनिया दे मालक चवर शतर तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर लोक परलोक दे दाते गुरु धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हाजरी दे विच सुभाएमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ आप जी वड्डियां भागां वाले हो डिठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दियां हाजरियां भर रहे हो बेअंत संगतां इथे बैठ के हाजरियां भर रही हन और बेअंत संगतां दूर दुराडे देशां विदेशां दे विच आपो अपने घरां विच बैठ के सतगुरां दे अस्थानां दी सरवण हाजरी भर रहे हन। गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान एओ पावन पवित्र अस्थान है जिथे पंजवें पातशाह प्रतख हर धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सतगुरु जी आप बैठ के संगतां दे नाल गुरबाणी दियां विचारां करदे सो सतगुरु जी ने कृपा कीती है आओ आपां सारे ही मालक दे चरणां विच जुड़न दा जतन करिए। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो अमृत गुरबाणी जी का कीर्तन भी आप जी ने सरवण किया है जो सचखंड दे अंदरों अज दा अमृत वेले दा मुख वाक गरीब नवाज सचे पातशाह जी ने 676 अंग उपर बख्शिश किया है उस दी विचार सरवण करन वास्ते आपां सारे सजे हुए हां। गुरमुखो जो मुख वाक आप जी ने सरवण कीता है इस दे अर्थ बड़े सरल हन बोली बड़ी सरल है पर विचला भाव बहुत डूंगा है। गुरबाणी नूं समझना इहदे वास्ते परमेशर दी कृपा परमेशर दे नाम दे अभ्यास दी जरूरत है। पंगतियां पढ़न सुनन विच तां भावें सरल लगदियां हुंदियां है पर इन्हां दा आशा इन्हां दा भाव सरल नहीं हुंदा बहुत डूंगा हुंदा है। आओ कुछ समा पहला मुख वाक दी विचार फिर लड़ीवार गुरबाणी दी कथा विचार आपां सरवण करनी है दोवें हथ जो

0: तक के जिन्ना पढ़ना है सब कूड़ ही है, और जिन्नी कमाई करनी है वो भी सब कूड़ है।
1: अंदर सुख ना हो भाई मन मुख जन्म खुआर।
0: बड़ी कमाई कर ली विषय वकारा विच पै के, पर पुछ के वेखो भी अंदर सुख हैगा, अंदर नु सुख हैगा। जवाब आएगा नहीं मेरा अंदर नहीं सुखी हैगा। दास ने एक बारी पहला भी मंजी साहब तो इथों बेनती कीती सी, महाराज ने पुछया सी मरदानिया इनू पुछ इन्हे नाम मन सुख रखिया, मन नु सुख हैगा ते मन सुख चरनी टै पिया सी भी सुख लैणी ते आया हां। अंदर नहीं सुख हुंदा। महाराज कहिंदे ऐसे मनमुख दा जन्म व्यर्थ जांदा है।
1: नानक नाम रते से उबरे गुर का हेत अपार।
0: जेड़े अपने सतगुरां दे नाल जिस गुरु दा पारावार नहीं पाया जा सकदा उस सतगुरु नाल प्रेमा भगती करदे हन और गुरु दे दित्ते शब्द दी कमाई करदे हन ओ फिर उबरे, ओ फिर संसार सागर तो बच जांदे हन।
1: मौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा।
0: महाराज पौड़ी अंदर कृपा कर दे, वो आप ही सारे कार्य कर रहा है और आप ही फिर वेखण वाला भी बन जाता। किड्डी वड्डी ओदी खेल है। कर आसन डिठो चाओ सारा पसारा पसार भी देंदा है, वख बैठ के फिर वेखदा भी है और वो आप ही सब थां ते सच्चा है।
1: जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा।
0: अमरदास साहब कृपा करदे भाई जेड़े अपने खसम अपने मालक अपने गुरु दा हुक्म बुझदे नहीं समझदे नहीं जानदे नहीं ओ फिर कच्चियां दी गिणती विच आउंदे हन, ओ मनुख कच्चे हन।
1: जित भावै तित लाए दा गुरमुख हर सच्चा।
0: कह लगे जीवां दे कर्म वेख के फिर वाहिगुरु आप दी इच्छा विच जिधर जीव नू चलाउणा चाहे फिर चलाउंदा है, पर जिन्हां ने गुरु साहब दी संगत कीती है कहिंदे गुरमुख हर सच्चा भाई उन्हां नू फिर मुखी गुरां राही पता लगदा भी वाहिगुरु ही सच है।
1: सभना का साहिब एक है गुर सबदी रचा।
0: गुरु साहब दे शब्द विच रचे रहिंदे हन रत्ते रहिंदे हन, उन्हां नू पता लग जांदा सभना जी।

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। धन्यवाद आपका जो आपने हमें सुनने के लिए चुना। कहा जाता है यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति, अर्थात जहां सुनने वाले श्रोता ही ना हो वहां वक्ता क्या कर सकता है भला। इसीलिए आप सभी श्रोताओं का दिल से आभार, क्योंकि आज के समय में यदि किसी चीज की कमी है तो वह है एक दूसरे से सार्थक संवाद। हम दिन भर ना जाने कितने विषयों पर चर्चा करते हैं, दूसरों के बारे में बातें करने में समय व्यतीत हो जाता है, किंतु एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करने का समय नहीं निकाल पाते। संसार की अनगिनत खबरों, घटनाओं और चर्चाओं में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिसने इस संसार की रचना की, जिसने हमें यह जीवन दिया, उस परमपिता परमेश्वर के बारे में सोचने और चर्चा करने का समय ही नहीं बचता। चलिए इस विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

सुन रहे हैं आप पुण्य दर्शन अपने दास के साथ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल खाना कमाना और भौतिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को समझना और भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को पुनः जागृत करना है। जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनके संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं, तब जीवन में एक नई शांति, नई दिशा और एक नया आनंद प्राप्त होता है। कुछ क्षणों के लिए संसार की भागदौड़ से स्वयं को अलग करें। हम संसार की अनेक बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान के बारे में सोचने का समय भी नहीं निकाल पाते। किंतु भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, यानी भगवान का संदेश बड़ा सरल है। वे हमसे कोई कठिन कार्य नहीं मांगते, वे केवल कहते हैं कि अपना मन मेरी ओर लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा स्मरण करो, बस केवल इतना। सोचिए, जिस भगवान ने हमें जीवन दिया, वायु दी, जल दिया, भोजन दिया, यदि हम दिन में कुछ क्षण उनका स्मरण कर ले तो इसमें हमारा कोई नुकसान है क्या? बल्कि इससे हमारा मन शांत होगा, जीवन में स्थिरता आएगी। आगे क्या कहते हैं इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस संसार में हम चाहे कितना भी धन पद या प्रसिद्धि प्राप्त कर लें, फिर भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता, यानी परमानेंट सुख कभी नहीं मिल सकता। गीता में वे कहते हैं कि यह संसार दुखों का घर है और अस्थायी है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे हमें निराश हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें उस शाश्वत सुख की खोज करनी चाहिए जो भगवान से जुड़ने पर प्राप्त होता है। संसार की वस्तुएं बदलती रहती हैं, किंतु भगवान का प्रेम और उनकी कृपा सदैव स्थायी रहती हैं। आज भी भगवद गीता का ज्ञान हमारे जीवन को दिशा देने के लिए उपलब्ध है। भगवद गीता एज इट इज, हम प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें, उसके अर्थ पर विचार करें और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। भगवान हमसे दूर नहीं है, वे हमारे हृदय में ही स्थित हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं और हमारे हर विचार और प्रयास को जानते हैं। इसीलिए जब हम सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान हमारी ओर अनेक कदम बढ़ाते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: का दिमाग लगभग 90% विकसित हो जाता है। निशुल्क किंडर 3 और 4 साल के बच्चों को प्राथमिक स्कूल जाना शुरू करने से पहले 2 साल की उपयोगी शिक्षा उपलब्ध करवाता है और परिवारों के पैसों की बचत कराता है। किंडर में बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिससे उनको महत्वपूर्ण सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक कौशल विकसित करने में और अपने दोस्त बनाने में मदद मिलती है। vic.gov.au/kinder पर और अधिक जानकारी प्राप्त।
1: जी की हाल है पिट दर्द दा?
2: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।
4: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानो उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
5: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्त लागू।
1: ओह मारे गए, दोबारा देर हो गई। गड्डी चलाउन विचों तना नूं बाहर कड्डो अते करो पहला ही तुर पाओ। जे तुसी गति सीमा तो तेज गड्डी चलाउंदे हो तां तुसी कानून नूं तोड़ रहे हो अते तुहानूं महंगा जुर्माना हो सकता है जां अपना लाइसेंस गुआ सकते हो। TSC वल्लों सुनेहा, हर किसी वास्ते सुरक्षित तरीके नाल गड्डी चला।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
4: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। Smash Repair, 8 Grace Way, Raven Hall।
5: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजुर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
6: की होया, इन्नी टेंशन क्यों लेती हुई है?
7: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
6: आज सिमी पहन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
7: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दें फिर ता।
6: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0403-8330-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
8: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है। इजी इलेक्ट्रिक SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है। ये सब कुछ एक ही स्थान पर। आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं। शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricscc.com.au पर जाएं। बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विक्टोरिया सरकार, मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत।
9: सोना चाहिदा,
10: भरोसा चाहिदा,
9: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
10: टेंशन

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लिए बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 04332802522 ते।